लिखे तेरा मुख सुहावा जी सहज धुन बाणी चिर हुआ देखे सारंग पानी तन सो देश ते गुरु पिता आपदा सुंदर स्वरूप मैं कदी अखां तो ओले नहीं सी वेख सकदा पर हुण तक कितनी मुदत बीत गई तेरा दीदार नहीं होया तन सो देश।

मन मैला हो जाता है ना, ते फिर गुरु दी करनी भी भुल जाती है। ये नहीं पता कि गुरु नूं तां 14 लोग इस तरह नजर आ रहे हैं जिवें हथेली ते औला रखिया हो। वो तां घट घट के अंतर की जानत है, पर इसने सोचिया शायद मैं चिट्ठियां

व्याकुलता दिनों दिन वधी वधदी गई, गुरु दा प्यार वधदा गया। आप हर वेले सेजल नेत्रां दे नाल हर वेले अरदास करदे रहिंदे हन, हर वेले एही दर्शन प्यासी दिन से रात चितवों अन दिन नीत। विछोड़े दे विच हुण गुरु अर्जन दे पातशाह जी दा ए हाल हो गया, जिस तरह किसे फकीर ने लिखिया है कि आशकारा ना निशानी ऐ पिशर, आहा शरदो रंग जरदो चश्म तर, कम गुप्तनो कम खुर्दनो ख्वाहिश हराम, इंतजारी बेकरारी दस्त कर। ए नौ निशानियां जो सच्चे आशकां दियां हन, हर वेले मालक दी याद विच नैन वहांदे रहना, मत्थे ते हाथ रखी रखना, कुछ खान नू चंगा ना लगना, नींद ना आनी, रंग पीला पै जाना। हुण व्याकुलता दिनों दिन वधदी गई, सावन दे दिन हन, चरियां लगियां होईयां हन, मैं मन तन शो भावे प्यारा, फिर परदेश सिधाए, फिर घर नहीं आवे, मरिए हावे, दामन चमक डराए, सेज अकेली खड़ी दुहेली, मरन भया दुखमाए, नींद नहीं पैंदी। एडी व्याकुलता दे विच आपने तीसरी चिट्ठी लिखी, आख्या एक घड़ी।

गौड़ी गंभीर प्रकृति का राग है। विलक दी आत्मा कृपा दी जाचना करती है, आपे दी खोज करती है। इसलिए इसे राग विच गुरु साहबान ने मन मत बुद्धि आत्मा मौत मुक्ति आदि गंभीर विषयों विच गुरबाणी उच्चारण की। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतांत दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत वीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखन जे खसमै चित करे, पाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन।

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दा है। गुरु साहब जी कहंदे ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिहा बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे ने दोस्ती करनी है

एक और सज्जन जिन्हों कच्चा सज्जन कहते, कच्चा दोस्त जेड़ा चंगे पासे तू माड़े पासे ले जाए, ओनू कहते ने कच्चा। कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कोई सत्संग जा रहे है, ते रस्ते विच मिल पवे ते आखे छाट गुरुद्वारे मंदिर की जाने, आपा किधरे दूसरे पासे चलते, ओ कच्चा सज्जन, कच्चा दोस्त। पक्का सज्जन ओ जे कोई माड़े पासे जांदा होवे, ओनू आखे छाट माड़ा पासा, चल आपा कीर्तन सुनी, किसे चंगे महापुरुष कोल बैठ के रब दी गल सुनी, माड़े पासे तू जेड़ा

इस जोगी ने डोरा फिराया जेड़ा मेरे लंगर विचों प्रशादा छकेगा मैं उन्हों 2 साल का स्वर्ग देवांगा।

पर जदू पता लगा भाई तिलकू नहीं आया ते जिन्ने लोग लंगर छक गए सी उन्हां दा ख्याल भुल गया भाई तिलकू मन विच रड़कन लग पिया कि इन्हें क्यों नहीं लंगर छके इन भी मैं लंगर छक

जोग कहन लगा एक और फिर जाओ उसनु कहो मेरे लंगर विच आके प्रशादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकू दे घर गए बुआ खड़काया पाए तिलकू जी ने बुआ

मैं देखा फिर एक इन्नी शक्ति दा मालक है जिड़ा मेरे आखे नहीं लगता जोगी आसन ला के बह गया रितियां सिद्धियां प्राप्त सन उन रितियां सिद्धियां दे सब

जोगी दे लंगर विच प्रसाद छक तेरा बचाव हो जाएगा, नहीं तो तेनू असी जिंदा नहीं छड़ना। पर भाई तिलकू उन्हां दा मन गुरु नाल जुड़े है, ते जिदा मन गुरु नाल जुड़िया होवे एहो जिहा चीजां लागे नहीं आंदियां। ओ भूत प्रेत बथेरा रौला पांदे ने, भाई तिलकू बुआ कोल लंगर खा नहीं ते तेनू मार देंगे। हुण जिस गुरु दी ओट भाई तिलकू ने लई, ओ गुरु भाई तिलकू दी रखिया कर रहे है। उन्हां भूतां प्रेतां नूं कोई एहो जी चीज पैंदी है जिहड़ी चुक के पिछां सुट दिंदी।

दरवाजा खोल, जोगी आप तेरे द्वारे आया, पर हुन पाए दिल को नेबुआ नहीं खोले।

जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है, चल के लंगर छक। मैं तेनु सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया। भाई साहब ने

के बुआ खोले। गुरु दी गलती गुरु दे प्यारे अपनी जाना वार देंदे, गुरु दे चरणा तू कुर्बान।

तेरा गुरु केड़ा जिदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता, जिदे चरणा दे नाल तू मन जोड़े है ते स्वर्ग नू ठुकरा दिता, उस गुरु दे मैनू भी दर्शन करा मैं भी दर्शन करा। केड़ा ऐसा गुरु है जिदे चरणा नाल तू जुड़ के स्वर्ग दी परवाह नहीं करता। भाई तिलकू जी कहन लगे, मेरे गुरु मेरे नहीं ते सारियां दे सांझे ने, उन्हां दा नाम धन गुरु अर्जन।

इस जोगी ने पाई दिल को देनाल पाई, पाई दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां विच लग गया। हुण पाई दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाई दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वल लै तुरिया। इसे वास्ते सहबा ने कहा दोस्ती करनी उन्हां नाल करो।

सियाने कहंदे ने दोस्ती भी देख के पानी चाहिए। सोचना चाहिए जिद नाल मैं दोस्ती करन लगा ए मेरी दोस्ती दे लायक है कि नहीं, किधरे ता नहीं। आज जिद नाल मैं दोस्ती करन लगा कल एदे कोल मैनू नुकसान उठाना पवे। इस वास्ते के है तित जाए बहु सत संगति जिथे हर का

रंग बदली हो गया। जोगी कहन लगा दिल को, तू अपने गुरु की सिफत बड़ी की थी, बड़े गुण दसे ने अपने गुरु दे, पर एक गल दस, तेरे जिस गुरु विच इनिया सिफता इनिया वड़ियाईया ने।

गढ़ शंकर तो आ रही है, वो सारी की सारी जोगी समेत तिलकु समेत कनाथ के परले पास बैठा दियो, दूसरे पास साडा आसन ला दियो,

अचानक तूफान आ गया। लोकी सारे डर गए। मलान कहन लगे बचन की कोई उम्मीद है, तूफान बड़ा भयानक है, बेड़ी भी डोलन लग पी। इस तरह लगता है होन डूबी कि होन डूबी। मला कहन लगा जे कोई आदमी अपनी बलि देवे ताए तूफान बंद होवेगा। हुण सारे लोग एक दूसरे वाल देखन लग पे कि केड़ा बलि दिंदे। मैं भगवे कपड़े पाए सन,

लगदा भी कोई साधु ना एदा कोई अगे होना ना कोई पिछे। जे मर भी गया ता केड़ा किसने रोना है, इनू चुके सुट दियो। जदों सारे मेरे वल देखन लग पए ते मैं समझ गया कि इन्हां लोकां ने मैनू चुक के जरूर सुट देना। ओही गल होई, सारे मेरे दुआले हो गए।

संसार ते त्यागिया ही हुण शरीर ते आग ते साडी रखिया करो। मैं बथेरा रौला पाया पर उन्हां लोकां ने मैनूं चुक के समुंदर दे विच सुट दिता। मैं ता किसे तरह बने लग गया पर मेरा ओ कान किसे मच्छी या किसे जंतु ने काट लिया। ओ दे विच इक सोने दा मुंदरा भी सी। जदों इन्नी गल जोगी ने कही ता गुरु साहिबां ने कनात दे थल्यों हाथ दूसरे

प्राण अदारा, वो हर जगह है, हर स्थान से है, हर जीव अंदर है। तू उन आप लभ लै, आख्या मैं तेरा दुगनी मजूरी देवांगी, पर आख दे नहीं भगत जी ना, तो मजदूरी दा भुख है। वो तो एक मजदूरी मंगद, कैसी मजदूरी है, बेडी प्रीत मजूरी मांगी, वो ते प्रीत दी मजूरी मांगद। जे प्रीत करेगी ना, वो तेरी छन भी बना देवेगा। ए छन केड़ी, कोई छपरी नहीं, ए हिरदे रूपी छन, जिदे उत्ते विकारा रूपी बारिश हो रही है। इसनु उस तो बचान वास्ते अकाल पुरखी है, होर कोई नहीं। की करिए, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ओ बेटी दिता नहीं जा सकदा प्रीत कर, बेटी प्रीत मजूरी मांग है, जो कौ छान छुवावे हो, लोक टम सबू ते तोरे तो आपन बेटी आवे हो। क्योंकि इंसान अपना जोर लाउंदा है, जदों रह जांदा है उदों अकाल पुरख नूं याद करदा है। पर जे अकाल पुरख नूं तू हमेशा ही याद करें, ते तेरी ऐसी कदी भी नौबत ना आवे। सो साहिब सानू उपदेश देंदे ने, जिन्हें प्रेम कीता उन्हें प्रभु नूं पा लिया। प्रभु किसे नूं दित्ता नहीं जा सकदा, प्रभु नूं पाया जा सकदा। किवें? प्रेम ते भावना ते श्रद्धा दे नाल। आओ सारे मिलके पढ़िए।

परमात्मा अकाल पुरख की उस तत्व बड़ियाई दसी है। भगत कबीर जी कहते ने हे भाई आ उस सतगुरु की पूजा कर उसकी आरती इंज गायन कर जिमें के ओ परमात्मा अकाल पुरख वड्डा है ते उसनु याद भी वड्याइयां दे नाल कर। हुण सतगुर की पूजा की है, सतगुर की आरती की है। प्रोफेसर साहब सिंह जी ने इन्हां शब्दां दे अर्थ बड़े सुंदर कीते ने। लिहो आरती हो पुरख नरिंजन सतगुर पूजो पाई। भाई गुरु की आरती, सतगुर की आरती, गुरु की पूजा, गुरु के हुक्म मुताबिक चलना, गुरु के दसे मार्ग से तुरना, जिमें गुरु चलावे उवें चलना, ते गुरु के बाणे विच गुरु की रजा विच रहना, यह गुरु की आरती है। ते गुरसिख नेता प्रति उस मालिक की आरती विच जुड़िया रहिंदा है। ते कहिंदे ने आरती है, आरती करके परमात्मा की पूजा करके परमात्मा नूं रजा के उहदे कोलों कुछ मंगना, इहनूं कहिंदे ने आरती। परमात्मा कोल कुछ डिमांड करनी, कुछ जाचना करनी, उहदे अगे अरदास करके उहदे कोलों कुछ मंगना है। सो सतगुरु जी ने ख्याल बड़ा सुंदर दिता है। कल आपां गगन में थाल अता शबद वजंत पेरी रहाओ, इथों तक आपां विचार सरवण कीती सी। आओ अगले तुकां दी विचार अज आरंभ करिए कि सतगुरु जी ने सानू इस विच उपदेश कैसा दिता है ते भगत कबीर जी की कह रहे ने। इधर भगत कबीर जी ने बाणी विच कुछ आरती दे वचन कहे ने, इधर धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने। आपां दोनां नूं सरवण करना है कि उस मालिक की पूजा, उस मालिक की आरती किवें कीती जा सकती है। सहस तब नैन नन नैन है तोए, कौ सहस मूरत नन्ना एक तोई। सहस तब नैन नन नैन है तोए, हे परमात्मा तेरे सैकड़े अनेक ही नैन हैं, हजारां दी गिनती विच तेरे नैन हैं। सहस तब नैन, हुण फिर अगे लफज आ गया है, सहस तब नैन नन नैन है तोए। हे परमात्मा तू प्रगट भी है ते तू गुप्त भी है। जिवें तेरे हजारा नैन हन ते अकाल पुरख होण दे नाते तेरा कोई भी नैन नहीं है। हजारा तेरिया अखां हन लेकिन तेरी कोई भी अख नहीं है। सहस तब नैन नन नैन है तोए, कौ सहस मूरत नना एक तोए। एक पासे कहिंदे ने तेरिया सहस मूर्तां ने हजारा, पर हे अकाल पुरख जे तेरी वड्याई वल जुड़िया जाए तेरी कोई मूर्त नहीं है, क्योंकि तू मूर्त तो रहता है, तेरा कोई चिन्ह चक्र नहीं है, तेरा कोई आकार नहीं है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने

सब में जोत जोत है सोए, क्योंकि तू सर्वव्यापक है। सारे अंदर हे परमात्मा अकाल पुरख केवल तेरी जोत है, सब में जोत जोत है सोए। जिवें तू सर्व व्यापक है, सर्व व्यापी है, हर था रमिया होया है, इस तरह तेरी जोत सारिया विच व्यापी हुई है। तिस ते चानन सब में चानन होए, कहने सारिया अंदर चानन प्रकाश हे मालक तेरी जोत दाई है। तिस कह चानन सब में चानन होए, तेरी जोत दा सारिया अंदर प्रकाश है। एक चानन है पर एक गल सतगुरु ने कमाल दी कर दिती, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ए जिहड़ी जोत है ना, गुरसाखी जोत प्रगट होए, हुंदी गुरु दी कृपा नाल है। एवें प्रगट नहीं हुंदी जब तक असीं गुरु नूं नहीं ना मिलांगे, ए जोत साडे अंदर प्रगट नहीं हो सकती। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जदों गुरु की कृपा नाल अंदर जोत जग पवे, ते फिर की हुंदा है,

हे निर्गुण स्वरूप, हे दुनिया दे मालिक, हे सृष्टि दे मूल, हे जगत नू बनाने वाले परमात्मा, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया। बड़े बड़े सिद्ध जोगी जती जिन्ना ने तेरा ध्यान ला के तेरा ध्यान तर के बड़ा बड़ा तप किया, बड़ी बड़ी भगती की, सिद्ध समाध समाधियां ला ला के, पर कहते ने अंत नहीं पाया, तेरा अंत ना पा सके, तेरा अंत ना लै सके। फिर की होया, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, कहते ने आकर हार के तेरी शरण में आ गए, तेरी शरण में आ डिगे, तेरे चरणा नाल लग गए कि हे मेरे मालक, असी तेरा अंत नहीं पा सकते। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई जी वह अंत नहीं पा सके, उन्होंने आखिर मालिक के चरणों में डिगना पिया, ते तू ही उस लैंड ते ना तुरी, तू वह आरती करनी है जेड़ी आरती तेनों गुरु ने समझाई है। केड़ी आरती है? सतगुर पूजो भाई, आप ही अपने गुरु की पूजा कर, अपने गुरु के चरणों नाल लग। अगे भगत कबीर जी ख्याल देते हुए समझाते ने, कहते ने, ठांडा बरमा निगम विचारे। आरती उसकी करनी है जिसके दरबार विच बर्मा वर्गा खड़ा होके, ब्रह्मा बहुत वड्डा देवता है, पर ब्रह्मा भी उसके दरबार विच खड़ा होके वेद विचार रहा है। ठांडा बर्मा निगम, निगम का भाव है वेद। ठांडा बर्मा निगम विचारे, अलख ना लखिया जाए, क्योंकि हे परमात्मा तू अलख है, लखन तो बाहर है, तेरी लीला लखी नहीं जा सकती, तेरे गुण कहे नहीं जा सकते, तू इतना बेअंत है, तेरे गुण बयान नहीं कीते जा सकते, अलख ना लखिया जाए, वो अलख है जो लखिया नहीं जा सकता। अगे भगत कबीर जी कहते हैं,

हे परमात्मा अकाल पुरख मैं तेरे दर तो आरता करके ए दात मंगदा हां दाल सीधा मांगो कियो। दाल तुसी सारे जानदे हो जिन्हों दाल ते रोटी दा संसार दुनिया दा सब तो वड्डा है। कहिंदे ने दाल ते सीधा कहिंदे ने आटे नूं, दाल सीधा मांगो कियो, हे परमात्मा क्यों भी दे। हुण ए जे तीन चीजां तू मैनू दे दे हमरा खुशी करे नित जीओ, मेरा मन बड़ी खुशी नाल तेरी भगती करेगा। साध संगत ए ते बिल्कुल सियाणी गल है, ओ जिहदे घर खाण नूं ना होवे उहनूं भगती कित्थे सुझदी है, उहदा मन कुड़दा रहिंदा है। कहिंदा हे परमात्मा एवें संसार विच भेज दित्ता ही, खाण नूं ते दित्ता कुछ नहीं, जे कुछ खाण नूं देवे तो तेरी भगती करा, हुण खाण नूं ते लभदा नहीं तेरी भगती की करा। इसलिए भगत धन्ना जी कहिंदे ने हे मालक तेरी भगती भी तां होवेगी मैनूं ए चीजां दे, दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे, मेरा मन बड़ी खुशी नाल तेरी भगती करेगा। हुण भगत जी कहिंदे ने इत्थे ही बस नहीं, हे परमात्मा कुछ मंगा होर भी ने। पनिया छात्र निका अनाज मंगो सब सीका। पनिया दा पाव है पैर, हे मेरे परमात्मा मैनू पैरां दी जुत्ती बड़ी आला चाहिदी है। पनिया छात्र निका, हुण छात्र कहिंदे ने तन दे कपड़िआं नूं, पैरां दी जुत्ती अच्छी होवे, तन ते कपड़ा अच्छा होवे, सिर ते पग सोहणी होवे, ते वेखण वाला भी कहिंदा है कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी विच आया है। क्योंकि अज दी दुनिया दी निगाह सिर तो लैके पैरां तक जांदी है। ते भगत कहिंदा है हे परमात्मा जिहड़ा मैनू वेखे वह मैनू वेखदिआं तेनू याद करे, मैनू वेखदिआं तेनू याद करे। जे परमात्मा दा भगत ऐसा है ते परमात्मा कि पनिया छादन नीका अनाज मंगो सत सीका। पैरां दी जुत्थी अच्छी होवे, तन दे कपड़े अच्छे होण, ते अनाज सोहनी धरती वाई दा मैनू चाहिदा है। अनाज भी इहो जिहा ना होवे, अच्छी धरती वाई दा अनाज मंगो सत सीका। फिर कहिंदे ने गऊ पैंस मंगो लावेरी इक ताजुन तुरी चंगेरी। हे मेरे मालक इक गऊ चाहिदी है, इक पैंस चाहिदी, पर सजर सुई, सजर सुई हुई। कहिंदे ने इहो जी मैनू दे देवी गऊ पैंस मंगो लवेरी इक ताजन तुरी चंगेरी। तुरी कहिंदे ने अरबी घोड़ी, तेरे भगत नूं घोड़ी भी चाहीदी है असवारी वास्ते। बस हुण इंज समझ लो उस वेले घोड़ियां सन, इस वेले आ मोटरां कारां ने, कितनी कितनिया महंगिया, कितने कितने नाम ने उन्होंने, जिहड़े गिणे नहीं जाने। पर उस वक्त अरबी घोड़ी सब तो आला गिणी जाती सी। गऊ पैस मंगो लवेरी इक ताजन तुरी चंगेरी। अंत विच कहिंदे ने हे परमात्मा आ डिमांड ध्यान नाल सुनी, कर की केहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी। भगत ने परमात्मा नू आरती करके खुश कर लिया, इंज कह लो भगती करके खुश कर लिया। जदों हुण परमात्मा खुश है, परमात्मा कहिंदा भगता जो मंगी जाएगा देई जाऊंगा, क्योंकि उन्हें अपने वास विच कर लिया। कहिंदे ने हुण जिहड़ी डिमांड अज सामने रखी कि अंत विच मैनूं घरवाली चंगी चाहीदी है, क्योंकि घरवाली दा बहुत साथ हुंदा भगती विच। जे घरवाली ना चाहे ते खिमा करना भगती बहुत औखी है, बहुत कठिन है। यह जिन्हें भी भगत धन श्री गुरु ग्रंथ साहब च बैठे ने उन्हां दियां घरवालियां दा साथ है, क्योंकि घरों साथ होना जरूरी है। इसलिए घर की गहन चंगी जन तन्ना देवे मंगी, तन्ने ने मंग के ले। हुण अगे चलिए, भगत कबीर जी इस आरती नूं कहिंदे हुए कह रहे ने कि हे परमात्मा मैं तेरी आरती इसे लिए कीती है कि मैं भी ग्रस्ती हां, मैं भी बाल बच्चरदार हां, मैनू भी कुछ चाहिए। हम
ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗੇ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੋਰਠ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨ ਕੀਜੇ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰੋਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਲਾ ਫਾਣ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਰੱਜਾ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਰੱਜਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੜ ਲੈ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋਰਠ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੇ, ਫੜ ਮਾਲਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਹਉ ਮੰਗੋ ਸੰਤਨ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰੂਦ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿ। ਹਉ ਮੰਗੋ ਸੰਤਨ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਲ ਪਈ ਬੂਹਾ, ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸੀ ਬਣੇ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ਆਪਣ ਤੇ ਹੋ ਤੋ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ। ਮਾਧੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਮਾਧੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕੈਸੀ ਬਣੇ ਤੁਮ ਸੰਗੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੰਗ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਨਾ? ਆਪ ਨਾ ਦੇਵੋ ਤੋ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਨੀ ਦੇਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਆਓ, ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਰਜ਼ਾ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਮੰਗ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਦੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਗਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਦੀ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ?

कोई सौखी चीज मिल जाए, कोई घालना ना घालनी पवे, इस तरह नहीं। ये तुरती चीज इलाही दास जिन्हों लिखी उसे नो मिलनी है।

जिहड़े दूसरे भरा सन उन्हां दे लड़के दे नाल व्याहे होए सन। बीबी अमरो कहन लगे, पिता जी, मेरे पिता गुरु अंगद साहब खडूर साहब रहिंदे ने, मैं आप दे नाल जरूर चलांगे, पर मैं तां जा सकदी हां अगर मेरे सास सहुरा और मेरे पति इजाजत देंगे। साथ संगे एक गल ध्यान विच रखें, अजकल घरां विच कलेश और दुख इसे वास्ते नहीं कि घरां दे असूल घरां दे नियम खत्म हो रहे, वड्डियां दी इज्जत वड्डियां दा आदर करना उन्हां दा कहा ना मनना ये आम हो गया। हुण इत्थे देखो, बीबी अमरो गुरु अमरदास नूं कह रहे ने, पिता जी जदों तक सस सहुरा इजाजत ना देण, पति इजाजत ना देवे, मैं पेके घर किस तरह जा सकदी हां। फिर जदों तक पेके घरों कोई संदेशा ना आवे, पिता दा कोई समागम ना होवे, मैं किस तरह जा सकदी हां अपने गृहस्त जीवन विच। जे आपा सुखी वसना है तां इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना पवेगा। वड्डियां दी आग्या, वड्डियां दा कहना मनना फर्ज बनदा है, पर नाल इक गल इह भी है कि वड्डियां नूं भी छोटियां दी भावनावां दा ख्याल रखना चाहिए। दोनों पासे प्यार होवे तां जीवन दा आनंद कुछ होर हुंदा है। अमरदास कहन लगे, बेटा तेरे सस सहुरे मैं पुछ लैना, तेरे पति कोलों इजाजत भी मैं लै लवांगा, ते तुहाडे पिता गुरु अंगद साहब दे चरणां ते सिर रख के मैं उन्हां नूं मना लवांगा कि बीबी अमरो नूं मैं लैके आया, क्योंकि मैं गुरु वाला बनना। इस तरह अमरदास जिन्हां नूं आपां हुण गुरु अमरदास कहने हैं अपने पिंड तों खडूर साहब चल पे। जद खडूर साहब पहुंचे, गुरु अंगद साहब संगतां दे नाल बैठे हुए दोरों तक लिया कि साडा कुड़म अमरदास आ रहे हैं, क्योंकि भरा दा भरा भी कुड़म ही मनिया जाता है। गुरु अंगद साहब ने आसन दिता कि साडे कुड़म दा भरा कोई भी कुड़म ही लगा कुड़म आया। जद सिंघासन दिता बैठण वास्ते ता अमरदास ने हाथ जोड़ के चरणा ते मत्था टेकिया ते चरणा दे कोल ही बैठ गए। कहन लगे, पातशाह मैं कुड़म बन के नहीं आया, सेवक बन के आया, अपने चरणा विच देओ जगह, सिख बनाओ, अपना सेवक बना लो। उमर अमरदास दी ओ है जिन्हों आपा कहने बुढ़ेपा, उस उम्र विच आके सेवा की, लंगर च भांडे मांजे, लंगर पकाया, झाड़ू फेरिया और कठिन सेवा लई रोज सवेरे कुछ मील चल के प्यासा दरिया से जाते ने, पानी की गागर भर के फिर वापस आके पैदल गुरु अंगद साहब नूं

अमृत छतर गुरु रामे दियो समा बीतया गुरु नानक तो गुरु अंगद बने गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगति